0: साला दहले का बच्चा फिर तुम लोगों पे सवार हो गया? साला चिड़ी के गुलाम हो या बास्टर्ड? हम यहाँ 25 बरस से राज कर रहे हैं और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे काम में रुकावट डाले? क्या हमसे टक्कर रहे ब्लडी स्वाइंस, हराम ज़ादा, कुप्पे का बालास? वो साला म्युनिसिपैलिटी आदमी हमको नीचा दिखाता है।
1: जनरल कुछ समझ में नहीं आता, हम प्लान के मुताबिक जहाँ भी जाते हैं वो हमसे पहले पहुंचकर हाथ साफ कर जाते हैं। आखिर हमारी स्कीम का उनको पता कैसे चलता है?
0: इसलिए कि तुम सब साले गधे हो और तुम्हारी साली स्कीम गड़बड़ है।

0: सिगरेट?
1: हमारे प्रसाद को सिगरेट कहता है मूर्ख। सूटा मार।
0: सेठ जी सूटा मारिए, जल्दी सूटा मारिए। घोर चमत्कार भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे दिल की बात समझ गए होंगे।
2: समझ गए बच्चा, जो तुम दिखाई दे रहे हो वो तुम नहीं हो,
1: और जो तुम हो पुत्र उसे सिर्फ हमारे ज्ञान चक्षु देख रहे हैं।
0: मैं आपका दास हो गया, आपने दिखला दिया कि आप कितने महान हैं।
2: पर बच्चा, जो तुम समझ रहे हो वो हम भी नहीं हैं।
0: मूर्ख जो ठहरा भगवान, कैसे समझूंगा।
1: पर हम तुम्हें वचन देते हैं पुत्र कि जाने से पहले हम तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल देंगे।
0: क्या खोल देंगे?
3: ज्ञान चक्षु।

0: नहीं,
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल,
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरे।